शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

वफा तो बेकदर, यार बोले दे खबर, मैं दुनिया से बेखबर, ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर, तो क्यों इतना बेसबर। जिंदगी खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, कितनों को जेल हुई, जुर्म में इजाफा है, हम आना के देर हुई, इस कलम से वादा।

ये सिर्फ एक तमाशा है, देखी दोपहर नहीं रातों का राजा मैं। हमारा ये देर हुई पर अपनों से वादा है, इस जंगल को शेर नहीं अंधेरा सिखाता है।

0: हमारा राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहे नूरे लायोंगी यहां हुण नी जज जमानत दिंदा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: मैंने जाना तुम जो मदिरा से बरो मैं खाना लगती हूँ।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

दो जलने दो, समाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो। जलने दो, जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनके, तू ज्यादा ना सुना कर उनके, बस अपने ही किया कर मन के, बस अपने ही किया कर मन के। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू उनकी।

महकती है सदियां खुशबू का दर है, ये शहरे मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें है दिलकश ये मंजर, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है। परियों के महलों के किस्से कहानी, झीलों को जोड़े है झेलम का पानी, सफर तू बता मुझको चलना किधर है मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।

0: सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320।

0: जब करेगा दुआ कोई यार के लिए, खुदा भी टाल देगा। जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा। जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: स्वीट महल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी वाला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 to 1000 बंदियां दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-699-9999।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल PR कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या OCI ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईवन जीरो जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरों एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
4: ओ यार काव्या, होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
5: जी का तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
6: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104।
7: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
8: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जस बालू, इट्स 416-818-8900
7: और विजिट www.calidonpaving.com।
9: पंजाबी दिल, अंग्रेजी वाइब, CJMR इज बैक अलाइव, CJMR 1320 आ गया होए, छा गया होए।
10: शादियां व्याहां वाले मौके आंदे उत्ते पता लगता नहीं सच्ची काम काज दा।
11: ओ जी, इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल वालियां दी हुंदियां तां तैयारियां दी कोई टेंशन ही नहीं।
12: इना कोल टेंट, टेबल, चेयर, LED डांस फ्लोर, फ्लावर एंड डेकोरेशंस, 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ मिलेगा। इना कोल छोटे वड्डे हरेक फंक्शन लई अट्रैक्टिव टेंट्स अवेलेबल ने।
11: बुकिंग लई कॉल करो इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल 6477080079 6477080079।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: पिछले 20 सालों तो कस्टम वुडवर्किंग दिया प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुडवर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट, क्लोजेट, बार, टीवी यूनिट या डॉक्टर ऑफिस, डेंटल ऑफिस, ऑप्टिकल स्टोर दी वुडवर्किंग दा काम अपने बजट ते समय सिर करवाना चाहते हो तो चेते रखो मेपल वन किचन एंड बाथ इंक 173 एडवांस बुलेवार्ड जूनट 34 ब्रैम्पटन और 9054580075 9054580075 मेपल वन किचन एंड बाथ इंक।
3: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हैगा या गुरदीप सिंह ननुआ। आई एम अ लॉयर एट ननुआ एंड यूएफए लॉयर्स।
4: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट दैट रिजल्ट्स इन पर्सनल इंजरी, प्लीज लेट अस नो, वी कैन हेल्प।
3: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ
2: 6477936889। ਜੀਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸੀ 6475481188 6475481888 ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ। ਨੰਗੇ

0: ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਓਏ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਣਾ।
1: जे बिजनेस का करना चाहते हो प्रचार पर रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस की प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
2: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.
3: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network, Toronto.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: पिज़्ज़ा मशीन दी स्टील ते मिकलोगलन वाली लोकेशन ते इस सैटरडे संडे दो लार्ज पिज़्ज़ास विद तुहाडे मन पौंदियां थ्री टॉपिंग ईच नाल सिर्फ ते सिर्फ $19.99 दे विच कैश डील पिकअप कर सकदे हो। ए डील इस लोकेशन ते ही मिलेगी, 373 स्टील्स एवेन्यू एट मिकलोगलन, शेरडन कॉलेज दी बैक साइड, गिहिला ऑफिस वाला प्लाजा। वधेरे जानकारी लोकेशन दा नंबर है 905-456-3343 9054563343। पिज़्ज़ा मशीन।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फेर खड़ गया यार।
4: ओ प्रावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
4: इना कोड़ा साला दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: मैं लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबिकोक, यूनिट 5।
3: कॉल 6477 06-9257 6477 06-9257।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारे दे विच प्रोफेशनल पेंट द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो गिल हाउस पेंटिंग जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिलकुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 647-833-5960 6478335960 गिल हाउस पेंटिंग।
2: आओ फिर तुहानू अजिहे सुपर स्टार नाल मिलाउंदे आ जो कि होम लाइफ सुपर स्टार दे नाल काम करदे ने एज अ ब्रोकर थीम मनजीत दे मनजीत सिंह। घर खरीदना बेचना लिस्ट करना चाहुंदे हो तां पाउ दा सिक्का चलदा है। कम्युनिटी तो लंबे अरसे तो सेवा करदे आ रहे मनजीत सिंह। फोन नंबर 416-716-7653 या विजिट करो उन्हां दी वेबसाइट www.teammanjeet.ca।
3: विश्वास प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
4: पील रीजनल कौंसिल दी 26 अक्टूबर नू हो रही इलेक्शन मौके ब्रैम्पटन दे वार्ड 9 अते 10 तो उम्मीदवार सतपाल सिंह जौल दा नाम याद रखना जरूरी है। स्कूल बोर्ड दे ट्रस्टी वजों सतपाल सिंह जौल दियां मिसाली सेवावां तो लोकां दे मना विच तसल्ली दी लहर है जिस करके वार्ड 9 ते 10 दे वसनीक रीजनल कौंसलर वजों सतपाल सिंह जौल दी जित यकीनी बना रहे हन। लोकां दियां समस्यावां हल करन लई सतपाल सिंह जौल वालों लगातार तत्परता नाल काम किया जाता है। उना दी कैंपेन नाल संपर्क करन लई कॉल करो 416-895-3784 ते 416-895-3784।
5: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर हाईवेन 10 अते हाईवेन 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टेक्ट करो।
6: ਇਹ ਹੈ ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਵੈਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸਯੂਵੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਰਟਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਮਿਲੋ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ 38 ਐਡੀਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ ਇਨ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-740-5555 416-740-5555। ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਮੇਪਲ 1 ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਬਾਥ ਇੰਕ। ਗੂਗਲ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ, ਕਲੋਜ਼ਟ, ਬਾਰ, ਟੀਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਫਿਸ, ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਮੇਪਲ 1 ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਬਾਥ ਇੰਕ 173 ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਜੁਨਟ 34 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਕਾ 9054580075 9054580075 ਮੇਪਲ 1 ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਬਾਥ ਇੰਕ।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: कभी न रुकनी, मसाल कभी न बुझनी, संभाल पगड़ी अपनी, ये धमाका है द थिंग, ए समझो सामने तुम्हारे
1: को। CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र तो फूको बच्चे थे।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRIMB.com।

0: Mithaiya, snacks, delicious food, perfect dining. Vyadi Paji. Live catering le 4 food trucks vine. Catering for all parties. Quality number 1. Breakfast, lunch, dinner sab milega. Toronto cha foodies the perfect location. Yani Sweet Mahal. 680 Rexdale Boulevard. For more information, call Subkha Kang 416-679-9191.
1: Sweet Mahal.
2: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे मेरी निक्की भैन दा व्याह मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी
3: क्यों नहीं चन करे कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें
2: ठीक है जी चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने सेट रानी हार छापा मुंदरियां छल्ले बिस्कुट चेनिया वंगा कोके टिक्के कड़े ब्रेसलेट मंगलसूत्र सब कुछ प्योर ते यूनिक
3: हां नाले मैं सारी दियां बाहां भी तां पिंगियां करनियां ने 12 चूड़ियां ओनु भी ले दांगे
2: तो मेरे जीजे ली घड़ी
3: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां रोलेक्स दियां सारीयां घड़ियां हुंदियां ने
2: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर 7198 रोड माल्टन इन अशोक प्लाजा फोन नंबर है 9056714290
4: नुड़कुरो के कैलेडन सब्जी फार्म तो तुसी हर तरह दी ग्रोसरी इंडियन स्टाइल कईयां दातियां रंबे खुरपे तंगलियां फोल्डिंग बेड नवारी पलंग मूड़े कुर्सियां टेबल पारे थले वाले हर तरह दे हर साइज दे बर्तन तो इलावा ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग कर सकदे हो साग बनया बनाया भी मिलदा है जिन्ना मर्जी लाओ या घर ले आके साग तुसी खुद बनाउणा है तां कैलेडन सब्जी फार्म ते आओ 1250 रोड एट मेफील्ड जानकारी लिए कॉल करो 905-840-9000 कैलेडन सब्जी फार्म
5: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वॉशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 0045 Top Choice Electronics
0: जे बिजनेस दा करना चाहंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 Monday to Friday 11 AM to 12 PM and 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो आज ही कॉल करो 416-716-7094
6: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
7: HK Movers,
6: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
7: For service with a smile, give us a call.
6: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
7: 416-524-6704.
6: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
8: Long distance moving specialist,
6: HK Movers.
9: HK Movers.
5: ਜੀਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸੀ 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home
10: ਨੰਗੇ ਆਏ ਤੇ ਨੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਓਏ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਅਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਣਾ
11: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
3: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
4: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
5: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
6: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
7: HK Movers,
6: local and long distance,
5: we also ship cars,
6: tailor transport and moving services.
7: For service with a smile, give us a call.
6: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
7: 416-524-6704 pe.
6: Visit 140 Advance Boulevard, unit number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
6: HK Movers.
8: HK Movers.
9: Electro ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਟਾਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਟਾਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, 16 ਇੰਟਰਮਲ ਡਰਾਈਵ ਐਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਨੰਬਰ 905-799-0045 5799-0045 Top Choice Electronics।
10: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto,
9: CNN Toronto।

0: Unit 43 in Brampton, 905-790-5656, 56. That's 905-790-5656. J. Kaloti, tried, trusted, most effective.
1: अगर तुहाडे बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहुंदे हो तां इक्को इक नाम नूं याद रखना पिछले 25 सालां तों कम्युनिटी दे विच मन्निया परमन्निया नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह 416-451-4565 25 साल दी दिंदे ने नाल वारंटी 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा लई पानी दी लीकेज तों पाओ छुटकारा
2: कैनेडा दी मन्नी परमन्नी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शाह ट्रांसपोर्ट नूं चाहिए ने कुछ एक ड्राइवर्स इमीडिएट हायरिंग हो रही है ओनर ऑपरेटर्स टीम कंपनी ड्राइवर्स टीम सोलो ड्राइवर्स चाहिए ने जी कंपनी दे वास्ते कंसिस्टेंट लराडो टेक्सास दे रन्स स्टेडी माइल्स अते रिलायबल काम पूरा साल दिता जाएगा वधेरे जानकारी लई कॉल संदीप 416-903-8390 शाह ट्रांसपोर्ट दा यार्ड लोकेटेड है एट 5758 डिक्सी रोड इंटरसेक्शन 401 एंड डिक्सी नंबर एक बार फिर तो 416-903-8390
3: खुशियां दे जश्न बढ़ाओ ते रुसियां नू मनाओ अपने नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो ग्रेट फूड बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन कॉल 905-450-6464
4: Lali Sweet and Restaurant
5: पील रेनोवेशन दा पैगाम अगर तुसी अपने घर या ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम भाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेते रखो वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 647-648-1847 वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन
6: रिट्स फर्नीचर दा ए मैसेज जरा ध्यान नाल सुनो
7: सस्ता

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165
1: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 9057990045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स नुड़करो के कैलेडन सब्जी फार्म तो तुसी हर तरह दी ग्रोसरी इंडियन स्टाइल कईयां दातियां रंबे खुरपे तंगलियां फोल्डिंग बेड नवारी पलंग मूड़े कुर्सियां टेबल पारे थले वाले हर तरह दे हर साइज दे बर्तन तो इलावा ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग कर सकदे हो साग बनया बनाया भी मिलदा है जिन्ना मर्जी लाओ या घर लिया के साग तुसी खुद बनाउणा है तां कैलेडन सब्जी फार्म ते आओ 1250 एयरपोर्ट रोड एट मेफील्ड जानकारी लई कॉल करो 905-840-9000 कैलेडन सब्जी फार्म
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Vishwas प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटॉर्नीज बच्चियां लई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 9052328700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले
7: सॉलिड बम्पर चमका मारे मठारू वेल्डिंग तो पवा लो सारे मठारू वेल्डिंग
8: वाओ मूस बम्पर डियर बम्पर डीजल टैंक लॉक ट्रेलर रैंप टायर रैक ट्रेलर रिपेयर अल्मीनियम प्लेट बम्पर
9: कॉल सनी मठारू
8: 647-463-55
9: मठारू वेल्डिंग यूनिट 198 रदरफोर्ड
10: मठारू वेल्डिंग हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ आइए स्टीवंस फर्नीचर जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर चाहे बेड सेट हो सोफा सेट या मैट्रेसेस एवरीथिंग सिंस 1992 विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 9057560 स्टीवंस फर्नीचर
1: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स येकर तुहाडा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो कसूर तुहाडा है या नहीं तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रहियां हन तुसी सोच रहे हो करिए तां हुण की करिए कचीचियां ना वटो बस एक नाम याद रखो किसी भी तरह दे एक्सीडेंट दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010 डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी